ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸੰਤ।

जोड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

तिन प्रभ आप पुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत सियो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगसियो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सियो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को ताव है बहु पांती, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

पुराण जस उत्तम खट दर्शन गाल है राम। शंकर करोड़ तैतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गाव है।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

पाई है। जो कुछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाई है। जा कै प्रेम पदार्थ पाई है, तो चरणी चित लाई है।

आई। ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सदगुरु।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

सोहे लड़ाओ हर राम नाम गुर शब्दी विचारे राम हर मन तनो गुरमुख पीजै राम नाम प्यारे राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनहद सुर

समहे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रवया सोई, गुरमत सच पाइया।

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मान मोह मद सगल व्यापी, मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया, पूर्ण काज हमारे, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहै हर नाले तिन की कहन गत कही ना जाई सच्चै आप सवारे परम पुलाणे से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो

ज्यो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक परम भव है अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा।

हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावहे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

कर ही मह सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहज ध्यान, अन दिन गावै एको नाम। इस जुग मह वड्याई पाई, पूरे गुर ते नाम ते आई, जह देखां तह रहया समाई।

सफल सो आया बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

रहाओ सफल जन्म होवत बड़ पागी साध संग राम लिव लागी मात पात धन सुख सहज आनंदा एक निमख न विसरहो।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता से ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं नीच अनाथ अजान मैं।

रहाउ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका बड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊ

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

पाए। गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग इह मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड। जे ओ 68 तीर्थ

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप। बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। हर

पहला अंतर उत्पुज अवरना कोई जो कहिए सो प्रवत होई जुग है जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत परलो।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजाए।

सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवहो मन राखहो एक ठाई।

इहो शरीर सर्वर है संतहो, इशनान करे लिवलाई, नाम इशनान करह से जन निर्मल, शब्दे मैल गुवाई। त्रै

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाउ।

हाँ, नाम नर हर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

संत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे सर्ब

सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे भावै साचा। किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम मन जारे, क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहै जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै पाए बोलै, दूजै पाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगा

मोहिं गुरपुरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जय वड अवर ना कोए।

साध संगत का आसराय प्रभ सिउ रंग लाए औगण काट मुख उजला हर नाम तराए जन्म मरण पहु कट्यो।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रवसस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल एह रस।

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी।

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला। बहु मैले निर्मल होया, सब किल बिख हर

जिह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारियो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मह उर्जायो।

बिन हर गुर किन पत पाई हे, कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर भरम

गुर बिन मुख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

क्या निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग

भगवत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

फदवा जय गुर शब्द निरंजन पाया निर्भउ सो सिर नाहीं लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप

पुरख मन हाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया। गुर शब्द ही सब

तिस सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई।

गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हो मैं मार निवारी हे सच लगे।

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है, गुरमुख ना

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए। मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहे। मेरा प्रभु साचा असुर संहार।

है आन दिन गुण रवह दिन राती आन दिन गुण रवह दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मर है सिमरन सवार है हर के गुण हृदय उरतार है जन्म सफल हर चरणी लागे दूजा पाओ चुकाया।

सहजे गुण रहे दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उड है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

हे मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी बिरस गई हूं मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

उपदेश तुट है सब बंधन यो परम मोह पर जालना जहरा खै सोई सुख थाना सहजे होए सोई पलमाना।

पापखरं शराशरयत ले कम्मावहो त्रिकृत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गा।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा। निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

रहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन